आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

ए घोड़ा, सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए टोल

0: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कनिया आरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे बिछड़े वाले मुनिया।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हस के साडे नाल अरे साथ खड़े हम दोनों लगते हैं सोनी महिवाल।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो,

की कांडी लाऊं।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तू है बुलबुल
1: सच है बिल्कुल यू आर वंडरफुल
0: लग जा गले ए लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गर्ल हम तुम पे दिल्ली सार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है ए गर्ल तुम काहे को इनका

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हे अरे हे सूरदास का औलाद, तो अगर सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहा थे, हम कहा ठहरा करने को कहा गया गया।
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तहार पर जा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
2: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ई दारू का डब बंद कर दे।
2: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
0: बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
2: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
4: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
4: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

0: हाय राम, का हुआ रे गोविंदा?
1: हो तेरा बिटवा जवान होई गवा, हो तेरा बिटवा जवान।